हे परमात्मा तू आकाश है, मैं पंछी दी न्याई है, उड़ारी मारा ते उड़ान मेरी बड़ी हो सकती है, पर तेरे आकाश नालों बड़ी नहीं हो सकती। पंछी आकाश किवें माप सकदा है। हे परमात्मा तू सागर है, मैं मच्छी हाँ, तेरा ठाहो तेरा अंत किवें पा सकना। ना ते तेरी गहराई, ना तेरा म्यार, ना तेरे किनारे, इन्हां नूं जान नहीं सकता। गरीब नवाज संतां ने श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह फरमान कर

शैल पत्थर में जंत हो पाए, ताका रिश्क आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काश धरिया रहाओ। जन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की धरिया। सिर सिर रिजक संवाहे ठाकुर, काहे मन पो करिया। उडे उडावे सह कोसा, तस पाछे बचरे शरिया। तिन कौन खलावे कौन जगावे, मन में सिमरन करिया। सब निधान दस तस दान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पार आवरिया। रागासा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम पारा। सब चावे तुल जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर चावो संतो जी, सब दुख वसारण हारा। हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर।

हमारा अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, आप आदे मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सेख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब भैरन कौआ संघरिए, पूर्ण ए हमारी आशा, तोर भयन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याहो, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सेख हमारे तारिए, चुन चुन सत्र हमारे मारिए, आप आदय मुझे अवरिए, मरण काल का त्रास नवरिए, पूजो सदा हमारे पछा, सिरिय तुझ जो करियो रचा, राख लहे मोहरा खनहारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंसा, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजी अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन का योगी सेव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन का सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैन जैसे ने पजायो, आद अंत के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार ते सी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जांत, पले बुरे की पीर पुशांत।

बचाई सोइया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आकरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण करान अनेक हैं मत एक ना माने हो सिमरत साकर वे सब बहु भेद कहें हम एक न जाने हो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखाने हो दोहरा

सदा शिव तुसला तेरी नाम अनुसावै। नाम जन कै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गुआईया कर सान सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान किया गुरु वेठ जिस दियां ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ तुमारिया, तुर करम पाया तुद जन को से नाम हर कहे लागे। कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद।

संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीक कहते पवित सतगुर रिया पर पूरे बनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे जिसका होए उधारो यह वस्त जी नह जाई नित नित रख उतारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पुसारो श्लोक महला पंजवा।

आद अंत प्रभ सदा सहाई, तन हमारा मीत रहाओ, मन बलास भय सैब के, अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन बैज रखाई, हर सिमर सिमर

पावो सुख सहजे बर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बुदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मुख कर संतन की पूरे अंतर जामी पुरख बुदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मको कर संतन की सूरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दयदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े कै दूर जिनी नाम त्याया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम त्याया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

गुरुप्रसाद। लो सात संगत, ये पाठ तुसी सुन भी लिया ते कर भी लिया। हुण असी उचारण ते विश्राम ते अर्थां वल ध्यान दे। सब तो पहला एक ओंकार, आम तौर ते देखण विच आया कोई पढ़दा एकमकार, कोई एकमकार ते कोई कुछ उचारण करदा है, सिर्फ इस करके कि सेध ना मिलन करके असी वख वख उचारणां विच उलझदे। संसार दे अंदर जो साडा पुरातन मत है वह हिंदू मत, उस विच तीन देवतियां दी पूजा उत्ते बड़ा जोर दिता जाता। वह हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु नानक साहब ने इस स्थान नूं उलझण विचों बाहर कढ़िया ते आख्या वह एक है। इसलिए सब तो पहला एक दा उचारण करना है। उस तो बाद आउंदा है ओंकार, जिसका अर्थ है सर्व व्यापक है, सर्वशक्तिमान है। वह जिहड़ियां तीन ताकतां ने जिन्हां दे नाम रखे गए ब्रह्मा विष्णु महेश, वह इस एक दे ही स्वरूप हैं, एक दे ही अधीन हैं और एक ही सब कुछ करने वाला है। जदों सानू इह समझ आ गई ता गुरु नानक देव जी का संदेश असी दृढ़ कर। यह नहीं कि लोग पहला धर्मी नहीं सन, धर्म के कर्म नहीं करते, पर एक एक परिवार के अंदर किन्ने किन्ने देवी देवतियां की पूजा सी गिने नहीं सी जाते। मां किसे की पूजा करनी सी, प्यो किसे की, पुत्र किसे की, धी किसे। गुरु नानक पातशाह जी ने यह संदेश दिता

परम सत्कार योग साध संगत जी, चरणजीत अहूजा, हरभजन मान, गुरसेवक मान अते सतिंदरपाल सिंह सिद्धवा वालों फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

धन जियो तेह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जुद विचार देह नित न नित रहै जस नाव चढ़ भव सागर तार धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सिंह दीपक ज्यो उजियार ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै कातर तक तुवार बुहार पूरा सो पहचानिया जो लरा दीन के हेत पुरजा कट मरै पुरजा कट मरै।

0: संगतां ने प्रण कीता वधाई दे पात्रों दास अपने वालों मुबारक दिंदा वधाई दिंदा जिन्हें गुरु चरणा च प्रण कीता एक जकारे की गूंज विच होर प्रण करियो कि अज तो बाद जेडे पहले ही नहीं जानते हो ते वधाई दे पात्रों किसे संभी पखंडी दे डेरे नहीं जाना कन्न च फूक नहीं मरवानी मंत्र नहीं लेना गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसे नु गुरु नहीं मनना करियो हम प्रण साथ
1: बोले
0: तकरीबन सारिया संगता ने प्रण किया मुबारक भावे कोई कलीन सेव देखो उन्होंने भी इस गल का प्रण भी गुरु ग्रंथ साहब नु मथा टेकना गुरु मनना दमिया पखंडिया को कन्ना च भूखा नहीं मरवाणिया हौली हौली गुरमुख प्यारे सारे गुरु की सिखी वालों प्रेरित होवो जिम्मेवारियां गुरमुख प्यारे सब आपो अपनिया पछाणो फर्ज पछाणो इस गल का प्रण करना सारिया ने जिन्हें प्रण किया वधाई दे पात्रों आओ सिमरन वास्ते प्रण किया प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा चंद घड़िया करिए हैं सिमरन गुरु के चरणा च गज के सारे लाओ हां पलाथिया सारे गुरमुख प्यारे धरो गुरु ग्रंथ साहब पातशाह का ध्यान ये होवो जरा सिमरन जो

देही तो वै चक्कर बनाई, माया नू बहुत आवै, अंदर मैल ना उतरै होमै, फिर आवै जावै, नींद व्यापिया काम संतापिया, मुख हो हर हर कावै, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुत्ते क्या फल पावै, हंसा विच बैठा बग ना बणी, नित बैठा मच्छी नो तार लावै, जां हंस सभा विचार

बगला मत हुए मन लखावे जित को लाया तित ही लागा किस दोष दिचे जा हर एवें पावे सतगुर सरवर रतनी परपूरे जिस प्राप्त सो पावे सिख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुर कै हुक्मावे रतन पदार्थ मानक सरवर परपूरे खाए खर्च रहे टोट न आवे सरवर हंस दूर ना हुई करते इवें पावे जन नानक जिस दे मस्तक भाग तुर ले।

सुहावे अंतर बहुतारूहा व्यापया दुर्मत कुबुद्ध कुमूड़ा मन लागा तिस मोहा ठगे सेती ठागरा ले आया साथ पे इको जेहा सतगुर सराप नदरी विच दो कड्डे ता उगड़े आया लोहा बहुतेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरनी आवे फिर मनु रोहो कंचन होहा सतगुर नरवैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवे लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवे तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हों मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो भई।

आई सर्ब निरंतर कसम एको रब रहया गुर प्रसादी सच सचो सच लहया दया करहु दयाल अपनी सिफत देहो दर्शन देख निहाल

सो निर्मली हूँ निर्मला, जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछी है, जिसनो तेरी खुशी तिन नौ निध पुंची है, जिसनो तू प्रभु वल तिस क्या मोह चंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। सलोक महला पंजवा, ओ कृपाल स्वामी मेरे संता संग विहावे, तुदहो भुले से जम जम मरदे, तिन कदे ना चुकन हावे। महला पंजवा, सतगुर सिमरो अपना काट अवकट काट काट, हर हर नाम जपंतिया,

कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई ना जाए जे आवे तुदे आए। सलोक महला पंजवा दूजा तिस ना बजायो हो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दा तार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिख्या रस चार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक अरादे संतन रे नार महला पंजवा आनंद सुख बिस

बहुत दसावर पंदा ताहो सुख सुखाली सुती जा गुरमिल सज्जन मैं लद्दा पौड़ी सबे दुख संताप जा तुदो भुली है जे कीचन लाखे अपाव ता कहीं ना भुली है जिसनो विसरै नाओ सोने तन कांडी है जिसनो विसरै नाओ सो जोनी हांडी है जिस खसम ना आवै चेता तिस जम डांड दे जिस खसम ना आवी चेता रोगी से गणे जिस खसम ना आवी चेत सो खरो अहंकारिया सोई दोहेला जाग।

सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंध जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कू सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सो आन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमति आगंजत पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह सागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भागा।

अंग दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवा आहर सब करदा फिरे आहर एक ना होए नानक जित आहर जग उदर है विरला बूझै कोई पौड़ी वड्डी हूं वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर माण महत्ता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर जिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता श्लोक महला पंजवा सतड़े बाजार सोहन विच वपारिये वखर हिक अपार नानक खटे सो धनी महला पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम किसहु के नाही जिन एहो रचन रचाया तिस ही माहे समाहे पौड़ी सफले हो बिरख सुहावड़ा हर सफले अमृता मन लोचै उन मिलन को क्यों वंजे किता वरना चेहना बाहरा ओह अगम अजिता ओह प्यारा जी का जो खोले पिता सेवा करी तसाड़िया मैं दस्यो मिता कुर्बानी वन्या वार ने बले बल किता दसन संत प्यारिया सुनो लाए चिता जिस लिखिया नानक दास तिस नाओ अमृत सतगुर दिता श्लोक महला पंजवा कबीर धरती साधके तस्कर बैसह गाही धरती भार ना व्यापई उनको लाहू लाहे महला पंजवा कबीर चावल कारनी दुख को मोहली लाए संग संगी बैसती तब पूछे धर्म राय पौड़ी आपे ही वड परवार आप एकातिया अपनी कीमत आप आपे ही जातिया सब किसे आपे आप आप उपन्या अपना कीता आप आप वरन्या धन सो तेरा थान जिथे तू उठा धन सो तेरे भगत जिन्नी सच तू डिठा जिसनों तेरी दया सलाहे सोए तुद

हम एकै कर जानी हम निर धन ज्यो एहो धन पाया मरते फूट गमानी करै गमान चुभै तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कामना कढ़ते अपने गुर प्रसादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले है सारंग पानी राम कबीरा एक भये है कोई ना सकै पछानी संता मानो दूता दानो।

0: तो रन मैं जूझ बिन दागे भग जाई साधु होए सो भगत पछाने हर लए खजाने पाई कोठरे मह कोठरे परम कोठी बीचार गुरदीनी बस्त कबीर को लेव हो बस्त समार कबीर दी संसार को लीनी जस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया हिरता का सुहाग।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning

गुरु स्वरूप साध संगत अकाल पुरख श्री वाहिगुरु जी की अपार कृपा दा सदका अमृत वेले दा निर्मोलक समा प्राप्त होया है। नित नेम अनुसार धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने सचखंडी दरबार विच संगतां नूं दर्शन दार बख्श के निहाल निहाल कीता है। अमृतमयी बाणी दे जाप पाठ होए हन। सतगुरां दी रहमत दे नाल जो पवित्र बाणी भट्टां दे सवैयां दी विचार नित नेम अनुसार चल रही है। आओ सारियां संगतां अदब सत्कार दे नाल धन धन धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी दे सवैये जो महान विद्वान गुरु घर दे अनन श्रद्धालु पट श्री अमृतसर साहब श्री गुरु अर्जन देव जी दे सन्मुख उचारण कर रहे हन। गुरु कृपा दे नाल उस अगाध बोध बाणी दी विचार नाल

सन्यासी को जोगी पयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान दो हिंदू तुर्क कौन राज जी इमाम साफी मानुष की जात सबे एते पहचान वो करते

0: अत्र के चलैया
1: रंग केले रंग अंत खेल के
0: अत्र के चलैया छत छत के तरैया छत्र तारियों के।

सब जगत में जा प्रियो सब देश जा प्रियो सब देश सब जूनन मेरा दरिया ऊंच नीच के देश पूर्वी ना पार पाए सिंगुला हमाला त्यावे गोर कर देगी गुण गावे तेरे नाम जोगी जोग साधे कौन साधना कसे बवादे अरब के अरबी आराधे तेरे नाम है हरा के फरंगी मामी लाई कुरेसी जामी पश्चिम के पश्चिमी पहचाने निज काम है मृहतम गेले तेरी मन से उत्पस्या

सन्यासी को जोगी पयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान लो हिंदू तुर्क को राज जी इमाम साफी मानस की जात सबे एक पहचान लो करते क्रीम सोई करते क्रीम सोई हराजक रहीम ओही दूसरे न भेद कोई तूल परम मान लो एक ही की सेव सभी को गुरुदेव एक

आतिश और आग तोड़ लाओ है अनेक एक सोई पुराण और पुरानी होई एक ही स्वरूप सब

0: अत्रके चलैया रंग केले रंगा च खेड़ दे
1: अत्रके चलैया छत छत के तरैया छत्र।

आतिश ओ आग तोड़ लाओ है अनेक एक सोई पुराण ओ पुराण होई एक ही स्वरूप सब

इतनी चीजें कुछ लोग वगैरह सब ये हर बार इंसान वास्ते है, ये रास्ता बढ़ जाता है उस बात के प्रसाद।

रूप को चेतन कर जाओ। जय प्रसाद तेरी निर्लाओ विश्राम सुने, जय प्रसाद तेरा बोला रहे तू, मन सुख पाए हर हर जग कहे तू।

ஜெயபிரசாத் பாய் துர்லபுதே நான் பிரசாத்தை பத்துக்கரே ஜெயபிரசாத் பத்துக்க முட்டையே कई सारे ऑपरेशन गहरे कपड़े जिस सब प्राप्त है जो उसका अंदर चिलम वसिया हो सारी चीजें चल गया है।

प्रसाद तेरी निकी जात तो दिन तरा दिन रात प्रसाद तेरी पत्र है प्रसाद नाक जगते है।

मौसम तेरा सर्दी तेरा सूखा मौसम मेरा जियो पिंड तोरा तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जी सदा सदा तू है सुखदाई सदा सदा तू है सुखदाई इसलिए उसी कुल काम चलाने लगे थे एक कुछ खाते आपके मानो इस सुख को धारण करे सदा सदा तू है सुखदाई

कर्म काल समर्थ है। ये पुरुषारा के गुस्से खाके कभी ना हो जबकि अदास

जम नाहे दुख जिसको इत के कारिया उसमें कोई काड़ा कोई सोग नहीं जाता जिसको चित्ता

फरक सा दसिया लो प्यारे लाइट ले लो। लाइट की है सच ते अंधेरा की है झूठ। लाइट ले लो। लाइट के नाल तुम रस्ता दिसेगा और रब का दरवाजा दिसेगा। जंगल में साडा घर होवे ते होवे मस्या की रात। एक दरख्तों का अंधेरा एक मस्या की रात का अंधेरा तो फिर एक चुग्गी लभ के दसे तो सही। अपना घर से कोई लभ के दसे नहीं लभ सके। वो जरूरत कहनी पवेगी लाइट की। लाइट होगी घने जंगल विचों इन अपना घर लभ जाए। इस तरह संसार तौर अंधेरा है लाइट है सच की। जिदे को भी सच होगा उन्हू घर लभ जाएगा। जिदे को सच नहीं होगा वह अपना घर कभी भी नहीं लभ सकेगा कभी भी नहीं लभ सकेगा। तो मेरे साहब जी ने सच कहे सुन लो सभे और दुनिया के लोग एक सच सुनो कि दुनिया च झूठ किन्ना हैनेरा किन्ना। मेरे पहले पातशाह जी ने लिख दिता के कूड़ उमाल से सच चंद्रमा दीते नहीं कह चढ़े तो पाल कुनी हुई हंधेरे रहा ना कोई। साहब जी फरमाते हैं कि मैं पाल दी मैं थक गई हाँ पर मैनू हनेरे च रहा नहीं कोई लगता। इन्हों कोर अंधेरा जिम्मे मच्छा की रात को चंद्रमा नहीं दिसदा इस तरह ही होर कलज अंधेरे सच कि नजरी आता ही नहीं। करा कि सिद्धा ने पूछा तुम क्यों आए हो आख्या मैं सच लभन वास्ते चलिया। कूड़ उमाल वरत्या हाँ पालन चलिया संसारा मैं सच में लभन वास्ते तुरिया कि किधरे सच मिले पर सच थोड़े को है नहीं तुम भुल गए हो सीधिया सीधिया पा के कोई सच नाल नाल तुरिया आया सच बोलन वाले नू तपीलो ते बिठा दिता। सच बोलन वाले नू उबलदी देग विच बिठा दिता। सच बोलन वाले नू ग्वालियर दे किले विच कैद कर दिता। ते सच बोलन वाले नू दिल्ली चांदनी चौक विच शहीद कर दिता। सच बोलन वालियां दे एक एक बंद टोटे किया गया खोपड़ियां लाइया गई चरखड़ियां ते चढ़िया गया तुंबिया गया जिवें रूह तुंबीदा इवें सिखां नू तुंबिया जांदा सी। वो की सी उसे जुल्म ते किसे ने नहीं सन करते सिर्फ सच का इंसाफ चाहते सन झूठ के खिलाफ बगावत करते सन। झूठ नहीं थी सच सच है इंसाफ करना है ये खिलाफ से गौरमेंट सह न सकी फिर इस पता कर दिता कि जेड़ा जिंदा फड़ावे उन्हू 80 रुपये इनाम से जेड़ा सिर ले आवे उन्हू 40 रुपये इनाम दिता जाएगा। इन्हीं सच के खिलाफ गौरमेंट हो गई पर फिर भी सच कह रहा उस सच का सदका तुम सारे इतने बैठे हो। हम जिंदगी वास्ते लाइट लेनी है लाइट कौन देगा गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह सारे पढ़े हो गई लाइट तो सबना चाहिए है। खड़ाक होवे कसर होवे तो बिजली पैदा होंगी दूरों चीज डिगे तो अग विचों निकलती है पत्थर से पत्थर मारो अग निकलती डब्बी की तीली में कसाओ मसाले उत्ते तो अग पैदा हो जाएगी। वैसे मुंह च पा लो कोई डर नहीं लेकिन कसाओ से अग होगी। जब तुम बोलोगे उदो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के तेज का प्रकाश तुहाडे हिरदे च आ जाएगा क्योंकि इस बाणी के नाल कनैक्शन कलगी कर सच्चे पातशाह दा ते अकाल पुरख दा। इसलिए ये बाणी बोलन के नाल धुनी के नाल अंदरों कोई चीज ऐसी होगी जिहड़ी आनंद दे जाएगी हलारा दे जाएगी। इसलिए सारे पढ़ो भाई।

फिर करो भाई पूजा फिर। करोड़ रुपया ऐसे वार दिता जाए ना तो आ जरा सुख है उन्हें नहीं लग सकता जरा तुहानू प्राप्त हो गया। वड्डे तो वड्डा अमीर जरा सारी दुनिया का मालिक क्यों ना बने। कई इंद्र वार दिते जान ते आ चीज नहीं मिलती जी तुहानू प्राप्त हो गई। यह हो गए बख्शिश नाल ते बचेगी शुकराने दे नाल। होई है बख्शिश नाल ते हिरदे करेगी शुकराने दे नाल। जे जड़ा भी होवे आ गई तो यह चीज गवाच जाती है कसूर उड़ जाता है कस्तूरी उड़ जाती है और कशबू उड़ जाती है। रहेगी ये उसे जिसे शुकराने का प्याला रहेगा शुकराने का भांडा बनया रहेगा। यह कितने चीज रही है आ जी तुम प्राप्त है शुक्र विच सोना कितने ला रख दो लातों पेटियों डब्बों में। यह जो सत्संग का समा है परमेश्वर ने दिता यह कितने रहा है यह शुक्र विच शुक्र किया आसान मनिया तेरी खास मेहरबानी है तेरी खास बख्शिश है मैं ये चीज दिती है वो फिर टिकी रहेगी। तो जे ये कह दईए कि तेरा की मतलब मैं अपनी ताकतना चीज ली है अपनी सियाणता ली है अपनी जतना ली है तो उसे की हो गया हौ हौ करे ते आप जनाए बहु कर्म करे किछ खाए न पाए मनमुख मुग्ध करे चितराई नाता धोता थाए न पाई जिया आया त्या जाति कर औगुण पछो तावनी। इस लिए आ जिहड़ी चीज है ना यह शुक्र के भांडे विच रहिंदी जे होमे का भांडा चला जाए तो वह खराब हो के उड़ जाती क्योंकि होमे का सेक है। तुसी पाए नू ठंडे पानी च पा दियो सक दियो हेठा अग पाल दियो चाहे किन्ने भी पाए तुसी संपत पाए करो पारे ने रहना ही नहीं उड़ी जाएगा क्योंकि अग का सेक नहीं सह सकता। होमे है अग तो आ जी तुम चीज मिली यह है पारा जे मर जाए तो कोड़ हट जाए जे कच्चा खा जाए तो कोड़ हो जाए। यह चीज पारे वास्ते लिखी गई है। यह कदों तक साढ़े को ठहरेगा जिन्ना चिर यह किसी थर्मामीटर च बंद होया हो जरा टुट गया यह उड़ जाना इन लभना ही नहीं। इसलिए आ जो तुम चीज प्राप्त है ना सतगुरु सदा रखे यह चाह सदा ही बने रहन पर यह ठहरेगी कितने शुक्र के भांडे दूजे थां तो यह उड़ जाता आओ कि शुक्र आके धन्यवाद करिए गुण गाइए साडा आया हुआ सफला हो जाए।

गुण गोपाल नित गाए। मंगना च रसना नहीं है ना, रसना नु शुद्ध करन दा तरीका दस्या। ए रसना जे तू मंगना चाहनी है ते आ शर्ता पहले चार पूरियां कर दे।

0: ऐ रसना तू परमेश्वर के गुण गा। रसना का सवाल की मिलेगा कि कहते शांति मिलेगी, रहस खेड़ा मिलेगा, सहज ज्ञान प्राप्त होगा, फिर सारे दुखों का नाश हो जाएगा, चाहे लोक के दुख हैं चाहे प्रलोक के दुख हैं, वह भी तेरे सारे दुख भज जाएंगे। जिसने तू गुण गोपाल दे गाएगी और तेरे अंदर सांस आएगी, तेरे अंदर सहज ज्ञान आएगा, तेरे अंदर खेड़ा रहस आएगी, खुशी आएगी, तेरे सारे दुख चले जाएंगे। ते फिर तेरे वास्ते आ गया है जो मांगे सोई सोई पावे, फिर तेरे वास्ते आ गया है जो भी तू मंगेगी, जो भी तेन चाहिए है वह कुछ तेन प्राप्त हो जाएगा। सेव हर के चरण रसायन सारे पवे
1: जो

गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय कराए। सारे पासे बहुत है, सारे पासे इच्छा पूरी करता है। जे किसका जहाज डुब रहा है तो भी पार लंघा रहा है, जे किसी बेड़ी डुबदी जा रही तो भी पार लंघा रहा है। जिथे किसी भी किसी ने मंगी है सहायता, उसे ही सतगुर सच्चे पाशाह ने जाके ओदी सहायता की, ओदी मंग पूरी की। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लिया लय तराए। किस मुख

जो जो चित्रे सारे जन सो लेता मान हर दासन को पीत है हर दासन को मित हर दास के वस है जो जंती के वस जंती एक माल का कटाक्ष देता है हजूर फरमाते ने कि परमेश्वर वस यो है अपने दासा की यो गल मन जिमें यह वाजा साडा कहना मनता असि जिस पासे इस बजाइए जिस पासे लै जाइए एदा कोई इनकार नहीं जो जंती के वस जंत जंती कहंदे ने वजाउण वाले नूं ते जंत कहंदे ने वजण वाले नूं जिवें साज वजाउण वाला खुद मालक है इस साज दा जिहड़ी तार ते छेड़े जिहड़ी सुर छेड़े जिहड़ा राग अलापे साज नूं कोई इनकार नहीं इसे तरह हजूर फरमांदे ने कि भगत जो चाहे जो गुरु का सिख आके सतगुरु जी उसे तरह करन नूं तैयार

0: जितने सतगुर दास जितने हरमन बचिए जितने सतगुर दास।
1: मिसाल ओ पट कहंदे ने जिन्हां ने सतगुर दे दर्शन किते लिखा कि गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे परसन नाल केड़ी केड़ी चीज प्राप्त हुंदी।
0: गुरु अमरदास परतिए सिद्ध साधक आसा सै गुरु अमरदास परतिए पातक पहुं पातक बिना से
1: पापा दा नाश।
0: गुरु अमरदास परतिए सिद्ध साधक आसा सै गुरु अमरदास परतिए जान लईए पौ मुके
1: जन्म मरण दा पंध मुक जांदा है।
0: गुरु अमरदास परतिए ध्यान लईए पौ मुके

0: जो मंगे सोने प्रभ अपने संतान देवे, जो मंगे सोने प्रभ अपने संतान देवे।
1: आखो श्री वाह, एक बार सारे बोले

कोल्हू त्रिका चक्की चक तलवार लै बहुत अनंत लाटू मधानिया नुगा पंखी पौधे लैना चा सुए चाड़ पाइए जंत नानक पौद्या गंत ने अंत बंदर बंद पाए सोए पै कितन चै सब कोए नच नच हसे चले सरोए उड़ना जा ही चिदना होए नचण कुदर मन काचा नानक दिन मन पाओ तिना मन

लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लाभ गोबर तरण ना जाए। धोती टिक्का तै जप माली धान मले छा खाए। अंतर पूजा पड़े है कते बासन जम तुरका पाई।

ते अंदर सब को वेख नदरी हिर चलाईंदा आपे देवड़ियां आपे कर कराईंदा बड़ो बड़ा बड़ में ने सरस सहे लाईंदा नदरु पठी जे करे तो ताना भाव कराईंदा।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुराणी कमन मूर्ते कमन दिस्तानि जिन तू साज स्वार श्रृंगारिया गर्भ अग्न मह जिने उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन पूजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साक सैन मुख पियाओ बैठ को दैन ए निर्गुण गुण कछु ना बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जेह प्रसाद सर ऊपर सुख बसे सुत परात मीत बनता संघर्ष जेह प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुला जेह प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाम करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काड लेओ प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तिस स्यों प्रीत ना करे गुवार डांकी सेवा नाम निद पावे तांस्यों मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जांत दूरे जाकी टहल पावे दरगमान तिसे बसारे मुग्ध अजान सदा सदाए भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचे साच छोड़ झूठ संग मचे जो छडना सो अस्त्र कर माने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे धोए गर्धब प्रीत पसम संग होए आंध कूप में पतत विकराल नानक कार ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक प्रचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाही कछ करे।

मिथ्या तन धन कुटम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रत हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया एक हस्ता मिथ्या तो मो अपमान मिथ्या आपसु पर कृत गमान हस्तर भगत साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दब कोहिर मिथ्या नेत्र पेट पर त्यर पाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर पुकारा मिथ्या बास लेत बकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरती साकर की आर जा साथ बिना का हो सुचा बिरता नाम बिना तने अंध मुख्या वत्ता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरता बिहाय मेघ बिना जू खेती जाए गोविंद।

भेख न काहू पी अवर अपगेसै आप न करे आवत जावत जन्मै मरे जिसके अंतर बसै निरंकार जिसकी सीख परे संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप आप करतन मेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाव स्यानप सगल तेरे सब के जाने आत्म की रह जिस पावै तिस लय लड़ लाए शांत नंतर आसमाय सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अलोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव स्तदी जे पछाशति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जेह प्रसाद सगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जेह प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याए सदा मन अंदर जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहु तिस रसना एह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है ध्यावन योग जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसै त्याग कत अवर लुभावे जेह प्रसाद सुख सेज सुविजै मन आठ पैर तां काजा सुगवीजै जेह प्रसाद तुझ सब को माने मुखता को जस रसन मखाने जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगै मान पावे नानक पथ सेती कर जावे जेह प्रसाद अरोकन चुन दे जिव लावो तिस राम सुने जेह प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जेह प्रसाद तेरे सगल सिदर ठाके मन सरणी पर ठाकर प्रभु ताके जेह प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन सास सास सिमरू प्रभ उचे जेह प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक तां की भगत करे जेह प्रसाद अपूखन पहरीजै मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै जेह प्रसाद अस्वस्त अस्वारी मन तिस सब को कबहु नाम बसारी जेह प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसै त्याए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जेह प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिस का ध्यान जेह प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जेह प्रसाद तेरी नीति जात सो प्रभ सिमर सरा दिन रात जेह प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कह जेह प्रसाद सुने करना जेह प्रसाद पेख है बिस्माद जेह प्रसाद बोले अमृत रसना जेह प्रसाद सुख सह जे बसना जेह प्रसाद हस्त कर चल है जेह प्रसाद संपूर्ण फल है जेह प्रसाद परम गत पाव है जेह प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अव कत लागू हो गुर प्रसाद नानक मन जागो जेह प्रसाद प्रगट संसार जिस सब को मूल ना मनु विस्तार जेह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जेह प्रसाद तेरे कार्य पूरे किसे जान मन सदा हजूरे जेह प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुरात जेह प्रसाद सब की गत हो नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गुआए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल बगास सब सुख प्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व नदान प्रभ तेरी मया आपो पशु न किन्हू लया जित जित

साध जना की अचर्य कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सरली खोत साध कै संग मिटै अवमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभु नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक उपर जतन साध की महिमा बरने कौ परानी नानक साध की शोभा प्रमाहि समानी साध कै संग अगुचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब कीरेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु तावे साध संग अस्थित मन पावे साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महा

साध कै संग अजय संभ्याप आपे धन सार बढ़ाई नानक साध प्रभु बनियाई साध कै संग न कभू पावे साध कै संग सदा सुख पावे साध संग भक्त गोचर लह साधु कै संग अजर सह साध कै संग बसे थान ऊचे साधु कै संग महल पूंचे साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम ननान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीर कुटम निस्तारे साधु कै संग सो तन पावे जिस तन ते सब को वसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सुभासुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जन्म साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलूख तहरे साध कै संग नरक पर हरे साध कै संग इहां उहां सहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छा है सोई फल पावे साध कै संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध कै संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाव साध कै संग न मन ते बिसरे साध संग सर पर निस्तरे साध कै संग लगे परम मीठा साधु कै संग काट काट दीता साध संग पे आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध पीते संयोग सार की

साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद न पाई। श्लोक मन सच्चा मुख सच्चा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अस्परी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी कद समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी का तीर देख, ज्यों वसुधा को खुद को चंद्र लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुणाव, नानक ज्यों पाव का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी का मन हुए प्रकाश, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी का नाय अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा।

ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सभी परमया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुड़ता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास ब्रह्म ज्ञानी कह गिरिबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी लेता आवत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल पला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभसंग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अम्भु त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कार सदा आनंद।

हुई चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन ब्रह्म ज्ञानी करै प्रभ्याप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बर जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सरा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए उदाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की दत्त ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख बधाता ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल

भोगत अनुक प्रकार कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैती थवासी कई कोट मन परम उदासी कई कोट बेर के स्रोते कई कोट पीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कांत न पाव है कई कोट पये अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ कोहिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया शर्माए कई कोट पर देश परमाए जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध गति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पात्र बिरख निपजाए कई कोट पण पानी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट सस्यर सूर नखियतर कई कोट देव दान इंद्र छतर सगल समग्री अपने सूट तारे नानक जिस जिस पावे जिस जिस निस्तारे कई कोट राज सतामस सातक कई कोट भेद प्राण सिमरत अरसास कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जन कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पश्चात कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाज सब ते नेर सब हूं ते दूर नानक आप अलिप्त रह भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट भव जो नीप्य है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल थक पाए कई कोट किए धनवंत कई कोट माया में चिंत जहां जहां पाना तहां तहां राखी नानक सब किस प्रभ कह हाते कई कोट भये बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म में पार ब्रह्म लहमते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सुख प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभ ते हुए ब्रह्मा हिस्मात काका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास किन होत आत्म प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एक को नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सब सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सह समावे अपने धन को सास सास सुमारे।

जल तल मईल सोए अष्टपदी कर्ण ग्राम कन्न जोग ज्योत पावे सोई होग खिनमे ताप ताप नहारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तार अद रहावे हुक्मे उपजय हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अंक रंग प्रकार कर कर देख अपनी वडियाई नानक सब मैं रहया समाई प्रभ पावे मनुख गत पावे प्रभ पावे ता पात्र त्रावे सब पावे बिन सास्ते रखे सब पावे ता हर गुण पाखे प्रभ पावे ता पत उदारे आप करे आपन विचारे दहा स्नेहा का आप स्वामी खिले बिगते अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि वरन आवे कहू मनुख ते क्या हुए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किस ले जो तिस पावे सोई करे अनजानत बिख्या मेहरच ये जानत अपने आप बचे धर्मे भूला दैत सतावे निमक माही चार कुंट फिर आवे कर कृपा जिसे अपनी भगत।

जगदीश जियो पिंड सब चित कीरास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप मनाई नानक जी वै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करण कराम सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो चित पावे सोई फुन पियो कबहू ऊंच नीच मैं बसै कबहू सोग हर खरंग हसै कबहू

कब हूँ सब के हो तरवाल, कब हूँ होए बह बड राजा, कब हूँ भिखारी नीच का साजा, कब हूँ आप कीर्त में आवे, कब हूँ भला भला कहावे, ज्यों प्रभ राखे तिवही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह, कब हूँ होए पंडित कहे बखियान, कब हूँ मोन तारी लावे ध्यान, कब हूँ तक तीर्थ इकनान, कब हूँ सिर साधक मुख ज्ञान, कब हूँ कीर्त हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परम परमिया, नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे, जो प्रपावे तिवें निचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कब हूँ सार संगत ए पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं बनास, मन तन नाम रति एक रंग, सदा बसह पार ब्रह्म कै संग, जो जल में जलिया एक खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योति समाना।

ऐसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, जो किसी तीनों सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूँ कै संग, बुझ देख करे विवेक, आप एक आप अनेक, मरे न बिनसे आवे न जाए, नानक सद ही रहे समाए, आप उपदेश समझे आपे रचिया सब कै साथ, आप किन्नों आपन विस्तार, सब कछ उचकाओ करने हार, उसते पिन कहो किस होए, थांतनंतर एक ऐसोए, अपने चलत आप करने हार, कौतक करे रंग पार, मन में आप माने अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किने बखियानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने

मुख उजल हर दरगह सोए ए व्यापार बिरला व्यापार है नानक ता कै सद बलिहार है चरण साध के तुए तुए पियो हर प्रसाद को अपना जियो साध के तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़भागी पाई है साध संग हर की तन गाई है अनक बिघन ते साधु राख है हर गुण गाये अमृत अष्टक है कोट गही संत हम दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जवा हार भूखे को देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पुरु लिखे का लहना पाहे सब के सिस का करने जोग चित बिन दूसर हुआ ना होग गप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल एक करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल किया डाट मन गुर की पतीत तिस जन आवे हर प्रभ जीत पगर पगर सुनिया ते लोए जाके हृदय को होए सच करनी सचता की रैत सच हृदय सतमुख कैत सच इजर साचा आकार सच वत है साचा पसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समत्ता सलोक रूप न रेख न रंग किस एह गुण ते प्रभ भिन्न जिसे बजाए नानका जित हो ऐसो प्रथम परी अवनासी ब्रह्मन में राग मानुख की तुम प्रीत त्याग किसते पर नाही किस होए सर्व निरंतर पर एक हो सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन की नराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कृपाया सोई होग हरन परन जाका नेतर फोर किसका मंत्र न जाने होर अंद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिय घर तक राज महराज जोग मह जोगी तप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगी त्याय त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मेत नाही सगल देव हारे अवगाए पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिंदे।

एक करे एक रंग नाना विद कीनो विस्तार प्रभ अविनाश की एक अंकार नाना चलत करे खिमाहे पूरे पूर्ण सब ठाए नाना विद करबंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद प्राण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल अकार नाम के तारे पुरिया सपन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाहि समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब भली सत नाम प्रका सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कै हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करने हार अवर ना बूझ सत विचार करते की मित ना जाने किया नानक ज्योत पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बूझिया तसे आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जम रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे कोय दाते दुख काटन हार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सो वड भागी।

अपना प्रभु पिछाता सो जानू सर्व थोक का दाता इसकी सन सर्व सुख पावे इसके दर सो सब पाप मिटावे अवस्यान पुसगली काड इस जन की तू सेवा लाग आवन जान ना होगी तेरा नानक इस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ तिसकै संग सिख उतरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुरु सिख की करे प्रतपाल सेवको गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख बकार के हाटे सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडपागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ ना जनावे हर हर नाम हृदय सद ध्यावे मन बेचे सतगुर के पास चित सेवक के कारज रास सेवा कर तो ए निकामी जिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मातले बीस बिसरे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर बिसरे हर नाओ हर कबार गुरु को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जान जान मैं पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सह स्यान पलया ना जाइए नानक ऐसा गुर बड़पागी पाइए सफल दक्षिण पेखत पनीत अरसत चरण गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गह गवे सुन कर बचन करन आगानी मन संतोख आत्म पतियानी पूरा गुरे अखो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मलाय जेबा एक पुस्तक अनेक सतपुरख पूर्ण बबेक काहू बोल न पहुंच प्राणी अगमन गुचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने ना पाई अनक भगत बंधन निरकर चरण कमल हृदय सिमर सब बलिहारी सतगुरे अपनी नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपनी के हर रस पावे जल कोए अमृत पीवे अमृत सुहोए उस पुरख का ना ही करे बना जा के मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सतबदे सेवक को दे वो माया कै संग न लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक परम मोह दुख कहते नासे तप्त माए ठांड वरताई आनंद पया दुख ना टिपाई जन्म मरण के मिटे अंधेसे साधु के पूर्ण उपदेसे ओ चुका निरपो हुए बसे सगल व्याध मन ते खै नसे जिसका सतन कृपा तारी साध संग जपना मरारी चित पाई चूके परम गमन सुन नानक हर हर जस सवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला ता जिन सगली मोही अपने चित प्रव्या बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोए सर्व निरंतर एको सोए ओठ को त्रव्या रूप रंग।

सोनान एक है जहाँ अवगत भगत है आप जहाँ पत्र प्रसार संपर्ता दोहू पाक का आप है तनी उनकी शोभा उन्हू बनी आप है कौतिक करे अनद चोज आप है रस को गुण निर्जोग।

हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राखै जिस कोए न मारे, सो मुआ जिस मनु बसारे, तिस तज अवर कहां को जाए, सब सिर एक निरंजन राय, जीत की जुगत जाके सब हाथ।

लोक सुखिए पर लोक सोए ले नानक हर प्रभे आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो सब परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदहार अमृत बचन हर के गुण गाव प्राण तन का यह सुहाव आठ पहर प्राप्ति खुर नीरा मिटे ज्ञान बिनसे अंधेरा सुन अपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दुए लिहो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन मस्ते तिस साच परीखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दग्गैन बह के तुम्हारी इक्का एक रखो मन माहे नानक बहुर ना आवे जाए किस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे रखन हार त्याए निरपहु जपे सगल पहु मिटे प्राण कृपा ते प्राणी छुटे जिस पर राखे तिस ना ही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अंकार जिस जन को कोई ना पहुंचन हार सिर ऊपर ठांडा गुरसूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पे कत कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तान सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसते सो होत निहाल आके निकट न आवत काल अमर पे अमरा पड़ पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर बनास हर कृपा ते संत पीटिया नानक मन प्रगास अस्पदी संत संग अंतर प्रवरीता नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकाट माही अन करंग नाना दिस्ताहि नौनिद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समार अनंत तैनाद कहन ना जाई चर्ज विस्मार जिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कट कट व्याप रहे भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सब लोक पूर्ण प्रतपाल बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसम तर माहे चार कुंट दैर से समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाव वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल ना कब हूं डोल सर्व

पावैत सलय मलाय कवन निकटो कवन कहिया दूर आपे आप भरपूर अंतरगत से आप जनाए नानक तिस जन आप जाए सर्वपूत आप वतारा सर्व नैन आप पेखनहारा सगल समग्री जाका तना अपन जस आप ही सुना आम न जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब कै मत लिप्तो रह जो कि कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे समाए इस दे हुए सुना ही बुरा पुरै कहू किने कछ करा आप भला करतूत आत्मी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सर साच पोत पोत आपन संग्राच ताकि गात्मित कही न जा।

पूरा प्रभ आराध्या पूरा जग का नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ परि पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक सास सास सिमरोह गोबिंद मन अंतर की उतरे चिन्ह आस अनित त्यागो तरंग संत जना के तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग परि परमानंद नरक नवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल मुगदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण।

केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है।

0: केळबोधी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

परमेश पिता वार दो दलारे चारे जेना दच मेच पिता वार दो दलारे चारे पुत्रां दा दानी दस कैसने कहो।

0: वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।
2: महिमा कही न जाए गुरु सम्राट।